0: कौन है
1: और खोने वाला कौन है,
0: पाने वाला कौन है और खोने वाला कौन है। इस जहां में यारो किसका होने वाला कौन है, क्यों किसी मैयत का मातम कर रहे वो दोस्तों, मरने वाला क्या बताए कि रोने वाला कौन है।

गज गणपति गज अश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित

0: तू ही बुला।
1: अरे हाँ बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनेगा।
0: चल बुला, चल बुला।
2: ना बाबा ना, लो मैंने बुला।
0: हाँ तेरी तो जरूर सुनेगा।
2: अरे बुलाना। अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ। गोपी, ओ गोपी,
3: क्या

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा, ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

कदम, तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पट्टा खे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा।

कौन है और खोने वाला कौन है, पाने वाला कौन है और खोने वाला कौन है। ये जहां में यारो किसका होने वाला कौन है, क्यों किसी मैयत का मातम कर रहे वो दोस्तों, मरने वाला क्या बताए कि रोने वाला कौन है।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए खुल।

0: अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी।
1: तो क्या हुआ?
0: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
1: चल पगले।
0: फिर सुनो तो आगे हमारी

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना। धक धक धक पास वो आई बड़ी अदा से। बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4